सही है। और खाना ओ आप यहाँ क्या सना सना नार्थ से नेहरू मन रही है के ए बास से तो छुट्टी वा फिर पत्ते और सफेद वाला उम्मीद रा मिस्टर दियार ओ बेर नीरो के